0: की खातिर मर गया राजा, छोड़ के तख्त हजारा।
1: So what?
0: और हीर तो फिर दी शॉपिंग कर दी।
1: Big deal, dude.
0: हीर तो फिर दी शॉपिंग कर दी। दिन भर सेक्टर सतारा भाई, दिन भर सेक्टर सतारा।
2: कोई राजा नारा चे दी यारी तेरे मैनू ते चढ़िया चा पैशन दा।
3: हाय चुकले रब्बा मैनू
2: मैनू ते चढ़िया चा